ही दानाई वारे किताब जूं आयतूं आहिनि। हिदायत ऐं रहमत आहे नेकोकारनि लाइ जेके निमाज़ क़ाइम कनि था, ज़कात ॾियनि था ऐं आख़िरत ते पको विश्वास रखनि।

ऐं इंसाननि मां को अहिड़ो बि आहे जेको बेहूदा दास्तान ख़रीद करे थो आणे त जीअं माण्हुनि खे अल्लाह जे रस्ते खां बिना इल्म वारी ॻाल्हि वसीले भटकाए छॾे ऐं हक़ जी दावत खे टोक जो हंधु बणाए। अहिड़नि माण्हुनि लाइ सख़्तु ज़लील कंदड़ अज़ाब आहे।

कल्कि ओथाई आसमानन खे बिना थंभन जे जो खणी तव्हां ॾिसी सघो ऐं ज़मीन में खोड़िया अथई जबल त मता इहा तव्हां सूधी पई लोडाल मां खाए ऐं हर क़िस्म जा जानवर इन में पखेड़े छॾिया अथसि ऐं असां आसमान मां पाणी वसायो ऐं मंझिस क़िस्मे क़िस्मे उमदियूं शयूं पायूं।

असां लुकमान खे दानाई अता कई हुई त अल्लाह जो शुक्र गुज़ार थियो, जेको शुक्र कंदो त संदसि शुक्र करण खेसि ई फ़ाइदो ॾींदो, ऐं जेको कुफर कंदो त हक़ीक़त में अल्लाह बेपरवाह ऐं पंहिंजो पाण साराहियल आहे।

ऐं इहा हक़ीक़त आहे त असां इंसान खे पीउ माउ जो हक़ सुञाणण जो पाण ई ताक़ीद कयो आहे। संदसि माउ तकलीफ़ मथां तकलीफ़ सही खेसि पेट में सांढियो ऐं संदसि थञु छॾाइण में 2 साल लॻी विया। मुंहिंजो शुक्रानो अदा कर ऐं पंहिंजे पीउ माउ जो बि शुक्र अदा कर। मूं ॾांहुं ई तोखे मोटणो आहे।

पर जेकॾहिं इहे थीन त मूसां कंहिं अहिड़े खे शरीक कर जंहिं बाबति तोखे का ॼाण ई कान्हे त संदन ॻाल्हि असुल न मञ। दुनिया में साणन सुठो सलूक कंदो रहो, पर पैरवी उन शख्स जी वाट जी कर जंहिं मूॾां रुख करे छॾियो आहे। नेठि तव्हां सभिनी खे मूॾां ई मोटणो आहे, पोइ तंहिं वक़्तु मां तव्हां खे ॿुधाईंदुसि त तव्हां छा छा कयो आहे।

पुटड़ा, काश सरह के दाने जेतरी भी हुजे ऐं कंहिं जबल में या आसमानन तोड़े ज़मीन में किथे बि लिकल हुजे त अल्लाह हुन खे कढी आणींदो। बेशक अल्लाह बारीक़ बीन ऐं ॾाढो बाख़बर आहे।

ऐं हलण में विच थरो थी हल, ऐं पंहिंजे आवाज़ खे बि झको रख। सभिनी आवाज़नि मां बुछड़े में बुछड़ो आवाज़ गॾह जो आवाज़ आहे।

छा तव्हां नथा ॾिसो त अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जूं समूरियूं शयूं तव्हां जे हथ हेठि करे छॾियूं आहिनि ऐं पंहिंजूं पधरियूं तोड़े लिकल नेमतूं तव्हां ते तोड़ रसाए छॾियूं अथई। तॾहिं बि के माण्हू अल्लाह जे बारे में झगड़ा था कनि सवाइ उन जे जो वटिन को इल्मु हुजे या का हिदायत या को रोशनी ॾेखारींदड़ किताब।

हाणे जेको कुफर थो करे त संदसि कुफर तोखे डुख में न विझे। उन्हनि खे मोटी अचणो त असां ॾांहुं ई आहे, पोइ असां खेनि ॿुधाईंदासूं त हू छा करे आया आहिनि। बिलाशक अल्लाह सीननि जा लिकल राज़ बि ॼाणंदो आहे।

असां थोरे वक़्त लाइ उन्हनि खे दुनिया में मज़ा मारण जो मौको ॾियूं था, पोइ खेनि बेवस बणाए सख़्त अज़ाब ॾांहुं गहले वेंदासूं।

जेकॾहिं तूं खान पुछीन त आसमाननि ऐं ज़मीन खे कंहिं पैदा कयो आहे त ज़रूर चवंदा त अल्लाह। चओ त अलहमदुलिल्लाह। पर उन्हनि मां अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि।

तव्हां सभिनी इंसाननि जो पैदा करणु ऐं ॿीहर जीअरो करणु त बस ईअं आहे जीअं हिकड़े साह वारे खे। हक़ीक़त ही आहे त अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे।

ॾिसी नथो छा त अल्लाह रात खे ॾींहं में लपेटींदे आणे थो ऐं ॾींहं खे रात में। हुन सिज ऐं चंड खे ताबे बणाए छॾियो आहे। सभई हिकड़े मुक़रर वक़्त ताईं हलंदा रहनि था ऐं त जेकी बि तव्हां करियो था अल्लाह उन खां पूरी तरह बाख़बर आहे।

इहो सभु इन करे आहे जो अल्लाह ई हक़ आहे ऐं उन खे छॾे जिन जिन खे उहे सॾीनि था से सभु कूड़े कूड़ आहिनि। अल्लाह ई मथां हू ऐं वॾो आहे।

ॾिसी नथो छा त ॿेड़ी समुंड में अल्लाह जे फज़ल सां ई हले थी त जीअं हू तव्हां खे पंहिंजूं के निशानियूं ॾेखारे। हक़ीक़त में त हिन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि हर उन शख़्स लाइ जेको सब्र ऐं शुक्र करण वारो हुजे।

0: ऐं इंसानो, पंहिंजे रब जे नाराज़ पे खां पाण बचायो ऐं डिॼो उन ॾींहं खां जॾहिं न की पीउ पुट जे पारां को बदर भरींदो ऐं न पुट ई को पीउ जे तरफ़ां भरे ॾियण वारो हूंदो। बेशक अल्लाह जो वादो सचो आहे, तंहिं करे न की हीअ दुनिया ई तव्हां खे कंहिं दोखे में विझे ऐं न वरी दोखेबाज़ ई अल्लाह जे बारे में तव्हां खे दोखो ॾिए।
1: عنده علم الساعة وينزل الغيث وي

0: इन्हीअ घड़ीअ जो इल्मु अल्लाह खे ई आहे, उहो ई मींहुं वसाए थो, उहो ई ॼाणे थो त माउरनि जे पेटनि में छा आहे। को बि साह वारो नथो ॼाणे त सुभाणे हू कहिड़ी कमाई कंदो, ऐं न कंहिं शख़्स खे इहा ख़बर आहे त कहिड़ी जाइ ते खेसि मौत ईंदो। अल्लाह ई सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं सभु ॻाल्हि खां वाक़िफ़ आहे।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اللہ جے نالے سان جے کو وڈو مہربان ائی رحم کندڑ آہے

0: सिद्धीअ वाट ते आहे। ज़बरदस्त ऐं रहम कंदड़ हस्तीअ जो नाज़िल कयल आहे त जीअं तूं ख़बरदार करीं हिकड़ी अहिड़ी क़ौम खे जंहिंजा अबा ॾाॾा ख़बरदार न कया विया हुआ, जंहिं करे उहे ग़फ़लत में पियल
1: आहिनि।
0: उन्हनि मां घणा माण्हू अज़ाब जा हक़दार थी चुका आहिनि, उन करे उहे

तूं त उन शख्स खे डेजारे सघीं थो जेको नसीहत ते हले ऐं बिना ॾिसण जे रहमान खां डिॼे। उन खे गुनाहनि खां माफ़ी ऐं भले अजर जी ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ।

असां ज़रूर मुअन खे जेरो करण वारा आहियूं, जेकी कुझु करे चुका आहिनि ऐं जेकी निशान पोयां छॾिया अथनि, तिन सभिनी खे असां लिखंदा था वञूं। असां हर शइ खे हिकड़े खुलियल किताब में लिखी छॾियो आहे।

उन्हनि खे मिसाल तौर उन ॻोठ वारनि जो किसो ॿुधाए जॾहिं मंझंदि रसूल आया हुआ। असां वटि ॿ रसूल मोकिलिया त हुननि ॿिन्ही खे कूड़ो सॼो, पोइ असां खेन मदद ॾियण लाइ टियों मोकिलियो ऐं उन्हनि सभिनी चयो असां तव्हां ॾांहुं रसूल करे मोकिलिया विया आहियूं।

रसूलनि चयो, असांजो रब थो ॼाणे त असां बेशक तव्हां ॾांहुं रसूल बणाए मोकिलिया विया आहियूं। भोले चिटो करे पिया खां सवाइ ॿी का बि ज़िमेवारी कान्हे।

ॻोठ वारा चवण लॻा, असां त तव्हांखे पंहिंजे लाइ नहूसत था समझूं, जेकर न आयो त असां तव्हांखे पत्थरनि सां मारींदासूं ऐं तव्हांखे असांजे पारां दर्दनाक सज़ा मिलंदी।

एतिरे में शहर जे ॾूरांहे पासे खां हिकड़ो शख्स डोड़ंदो आयो ऐं चवण लॻो, ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो, रसूलनि जी पैरवी करियो, उन्हनि माण्हुनि जी पैरवी करियो जेकी तव्हां खां को अजूरो नथा घुरनि ऐं सही वाट ते आहिनि।

चयो वयुसि त जन्नत में दाख़िल थी वञु। हुन चयो त जेकर मुंहिंजी क़ौम खे इहा ख़बर पवे हा त मुंहिंजे रब छाजे करे मूंखे बख़्शे छॾियो ऐं मूंखे इज़त वारनि में शामिल कयाई,

ॾिठो न अथनि छा त खाउन अॻु असां केतिरियूं ई क़ौमूं नाश करे चुका आहियूं जो पोइ उहे उन्हनि ॾांहुं न मोटियूं। उन्हनि सभिनी खे हिकड़े ॾींहुं असांजे रूबरू आणे हाज़िर कयो वेंदो।

उन लाइ मुअल बेसाही ज़मीन हिकड़ी निशानी आहे। असां उन में साह विधो ऐं मंझाउसि अनाज पायो जंहिं मां खाइनि था।

असां मंझिस खजुन ऐं अंगूरनि जा बाग पैदा कया ऐं मंझाउस चश्मा चीरे कढिया तांत हू हुन जो फर खाइनि। इहो सभु कुझु संदन हथनि जो पैदा कयल नाहे, पोइ बि शुक्र छो नथा कनि।

पाक आहे उहा ज़ात जंहिं हर जिन्स जा जोड़ा जोड़ा पैदा कया आहिनि, पोइ खणी उहे ज़मीन जे उपायल शयुनि मां हुजनि या संदन पंहिंजे ई जिन्स मां या वरी उन्हनि शयुनि मां जिन खे उहे ॼाणंदा बि न आहिनि।

0: उन्हनि लाइ हिकड़ी निशानी रात बि आहे, असां मथां ॾींहं जो पोश लाहे था छॾियूं त हू ऊंदहि में पइजी वञनि था ऐं सिजु पंहिंजे ठिकाणे ॾांहुं हलंदो रहे थो। इहो ज़बरदस्त ॼाणू हस्तीअ जो रिथियल हिसाब आहे।
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: ऐं वरी चंड लाइ असां मंज़िलूं मुक़रर कयूं आहिनि

न कि सिज जे वस में आहे त चंड खे वञी पुजे ऐं न रात ॾींहं खां अॻु कढी सघे थी। सभई कंहिं न कंहिं आसमानी मदार में तरंदा वतनि था।

उन्हनि लाइ इहा बि हिकड़ी निशानी आहे त असां संदन नसुल खे भरियल ॿेड़ीअ में चाढ़ियो ऐं पोइ वरी उन लाइ अहिड़ियूं ॿियूं बि ॿेड़ियूं पैदा कयूं जिन ते उहे सुवारी कनि था।

असां घुरूं त उन्हनि खे मोड़े छॾियूं जो संदन सॾु ॿुधण वारो ई कोन हुजे ऐं उहे कंहिं बि सूरत में बचाया न वञनि। बस असांजी रहमत ई खेन पार पहुचाए थी ऐं हिकु मुक़ररु वक़्त ताईं हयाती मानण जो मौक़ो ॾिए थी।

उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो त बचायो पाण खे उन ई पछाड़ीअ खां जेका अॻियां बि पई अचेव त पुठियां बि थी गुज़री अथव, त मन को तव्हां ते रहम कयो वञे।

इहे जंहिं जो इंतज़ार था कनि उहो रुगो हिकड़ो ददको आहे जेको ओचितो ई ओचितो अची इन हालत में मथां कड़कंदुनि जो उहे झगड़ा कंदा हूंदा ऐं पोइ न की का वसियत करे सघंदा ऐं न पंहिंजे घर ॿार ॾांहुं मोटी सघंदा।

0: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारी साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधाइण लाए तवा सा गद आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कय आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM अहिड़ो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर हिन नंबर ते राबितो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 331 25
1: FM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सिंध समेत समूरे मुल्क में अॼु 79वां जश्न आज़ादी क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोटा समेत नंढनि वॾनि शहरनि में शानदार आतिशबाज़ीअ जा मुज़ाहिरा। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआत कई वई। मुल्की सलामतीअ ख़ुशहाल ॾींहं लाइ ख़ुशी दुआऊं घुरियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामाबाद में यादगार फतेह जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तक़रीब दौरान यादगार फतेह जी तामीर बाबति दस्तावेज़ी फिल्म बि ॾेखारी वई। हवाई फ़ौज जे शाहीननि जो शानदार फ्लाई पास्ट कराचीअ में मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीली जी पुरवकार तक़रीब थी गुज़री। पाकिस्तान नेवी जे किट एज़ाज़ी गार्ड्स जा फर्ज़ निभाए वरिता। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ऐं वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ार ते क़ाइद ते हाज़िरी भरे गुलनि जी चादर चाढ़ी।

वज़ीर-ए-आज़म जमहूरियत हक में अजीम कामयाबी ते कौम के मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खराज तहसीन। शहबाज शरीफ चवाया तो फील्ड मार्शल की क्यादत में हथियारबंद फौज दुश्मन के तारीखी शिकस्त दिनी। हवाई ए समुंडी फौज के सरबराहन जो भी क्यादत में फौज जो किरदार सारा जोगो है। मुबारका हक की कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में गैर मामूली वाद कई जैं जो मिसाल नथो मिले। इस्लामाबाद में यादगार फतेह की फिदाई तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान के पानी जो एक एक फोड़ो असि रेड लाइन है। भारत सीधी वाट ते ना आयो तो खेस जवाब दिनो वो पाकिस्तान किथे दुनिया के तकरारन का पाक डिसण चाहे तो। तकरार गडियल कौमन के ठहराव मुताबिक हल थे घुर्जे। अमन चाहूं था पुरअमन की ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वे। वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो है तो सिंध पाकिस्तान ठाण में मुतहद हुई है। अज पाकिस्तान की तामीर ए तरक्की लाए पिण सिंध मुतहद है। जडे असा खां सत या अठ भेरा वडे मुल्क पाकिस्तान ते हमलो कयो तो समूरी कौम एक थी वही। अज असा पैंजी फौज के करे सुकून की निंड करे रहा हूं। असा जो वजूद पाकिस्तान के करे है। पाकिस्तान की तरक्की में असा सभी के पैंजो इज्तिमाई किरदार अदा करन घुर्जे। सीनियर वजीर शर्जील इनामेमण पारां 79 जश्न आज़ादी वे दिहाड़े ते समूरी कौम के मुबारकबाद। शर्जील इनामेमण है तो पाकिस्तान असो वतन है। असानी सुणप है। असानी उम्मीद है। असानी ख्वाबन की ताबीर है। ही वतन असाज शहीदन की अमानत असाज बुजुर्गन की कुर्बानी की निशानी असाजे ईंदड़ नस्लन की उम्मीद है। अज उन मान याद करण जो ढी है जन पाकिस्तान जो ख्वाब डिठो हो। अज अस आजादी वाली फिजा में साह खी रहा हूं। उन बेशुमार कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान है।

कराची में जश्न आज़ादी के मौके ते हवाई फायरिंग जा वाकया एक औरत मारजी वही औरतन बारन समेत 85 जणा जख्मी पापोश नगर सराफा बाजार में गोली लगन सब 32 वरन जी औरत निदाम मारजी वही औरंगी टाउन नाजमाबाद नॉर्थ कराची पापोश नगर गिजरी सदर अकबर रोड आया चंडीगढ़ रोड कोरंगी मलीर लांडी ए बेन इलाकन में फायरिंग जा वाकया।

तया फायरिंग सबब जख्मी थियलनि में 28 मर्द, 8 औरतूं, 10 ॿारा ऐं 5 निगरियूं शामिल आहिनि। जख़्मियुनि मां 26 ॼणनि खे जिना अस्पताल, 17 खे सिविल अस्पताल ऐं 18 ज़ख़्मियुनि खे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस फायरिंग करण जे इल्ज़ाम हेठि 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: ऐं के टी एन न्यूज़ जे शहीद साथी जान मोहम्मद महर जी टी वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद महर जी मज़ार ते माइटनि ऐं कलमदड़नि जी हाज़िरी टे साल गुज़रण बावजूद क़तल केस जा मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां आजा। सिंध हुकूमत जे वाइदनि बावजूद शहीद जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। छह जवाबदार बख़्शल महर, बाबर बशीर, मुनवर महर, रमज़ान शेख ऐं ॿिया ज़मानत ते आज़ाद थियल। मुख्य जवाबदार जुमन महर, गुलज़ार नसीब, रोशन मोहसिन महर ऐं ॿिया गिरफ़्तारी न थिया। शहीदनि जान मोहम्मद जा वारिस ऐं कलमदड़नि खे इंसाफ़ जो इंतज़ार।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: साइमान जो लामा पैदावार वधाए, फसल चमकाए, मुनफरिद फार्मूलो, सरायत पज़ीर असर, सुंडिन जे लाइ मौत जो परवानो, सारिन जी वधाए पैदावार, मुनाफ़ो मिले शानदार, सुंडियो डरी वञो, लामा अची वियो आ। साहिबान ज़रई मर्कज़नि ते दस्तियाब।
3: हिन मिटीअ जा रंग, रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
1: जी हा 2315-2576
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: आज़ादी हवाले से खास प्रोग्राम है आज़ादी जे रंग, इन वक्त प्रोग्राम में अस कचहरी कराइंदी हाल हवल वो तमाम सीनियर सहाफी हनीब सुहाग अस लाइंदी है, मालूम वी आज़ादी जा रंग जशन आज़ादी कि मल्हा साईं। अस्सलाम वालेकुम।
4: साईं वालेकुम।
3: हनीब सुहाग साहब तव्हांखे असां प्रोग्राम GFM 88 जे नेटवर्क में प्रोग्राम आहे आज़ादी जे रंग में तव्हांखे असां भलीकार पिया चऊं। सर जशन आज़ादी जो ॾींहुं आहे 14 अगस्त, तव्हां कीअं पिया मल्हायो पंहिंजे लाड़काणे में?
4: ॾिसो अॼु असांजी ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, सभिनी जेके पाकिस्तान वासी आहिनि उहे असांजी अॼु मोहबत जी निशानी आहे। हीउ मुल्क असांजी जेको आहे अलाए केतिरनि हज़ारे माण्हुनि जी जेको आहे क़ुर्बानी खां पोइ असांखे आज़ादु थी मिलियो।
3: बिल्कुलु,
4: इहा असां लाइ नेमत आहे ऐं हीअ नेमत असांजी अॼु जेको आहे जेका असांजी ख़ुशी आहे उहा ईद जहिड़ी ख़ुशी आहे।
3: छो
4: त असांजे मुल्क जी असांजी मुल्क जो आज़ादु उन खां पोइ पंहिंजो असां आज़ाद मतिलबु घुमण लॻासीं, आज़ादु खाइण लॻासीं। जॾहिं ॿाहिरि मुल्क इंसान वञे थो, असीं जॾहिं वियासीं
3: त
4: हुते अहसास थिए थो त भई असांजो मुल्क केतिरो आज़ादु आहे
3: ऐं
4: ॿियनि मुल्कनि में केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि। त उन हवाले सां असांजो मुल्क तमामु वॾो क़ीमती मुल्क आहे, तमामु वॾो अहम आहे ऐं असां ख़ुशि असां तमामु ख़ुशि नसीब आहियूं जो असां पंहिंजे आज़ादु मुल्क में पैदा थिया आहियूं। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु मां आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाडकन जो सेक्रेटरी बि आहियां, तव्हांखे ॼाण आहे त अॼु असां आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाडकन पारां बि राति जेको आहे तमामु शानदार जशन आज़ादी जो असां मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी में हिकिड़ी तकलीफ़ कोठाई आहे ऑफिसर सेक्टर में जेको आहे
3: ऑफिसर
4: सेक्टर आहे जिते म्यूज़िकल नाइट आहे। हिते में सिंध जा सुरीला रागी जंहिंमें सुरनि जी वर्खा कंदा ऐं उनखां टेबलो पेश थींदा, क़ौमी नगमा हूंदा जंहिंमें लाडकन जा ऑफिसर्स शहरी शख़्सियतूं मुख़्तलिफ़ शरीक थींदा।
3: उन
4: खां अलावा हींअर प्रेस क्लब में बि जेको आहे असां प्रेस क्लब पारां बि जेको आहे शानदार तकलीफ़ कलाक खां पोइ शुरू थियण वारी आहे
3: ऐं
4: जंहिंमें बि जेको आहे उते केक कटियो वेंदो ऐं उते शानदार तकलीफ़ थींदी जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं शरीक थींदो। ईअं ई सुबुह जो जीअं म्युनिसिपल स्टेडियम में असां कवरेज करण वियासीं
3: त
4: उते म्युनिसिपल कार्पोरेशन पारां शानदार जेको आहे तकलीफ़ थी जंहिंमें ॿारनि टेबलूस पेश थिया, क़ौमी नगमा जेको आहे पेश थिया विया, तकीरूं थियूं ऐं पंहिंजे मुल्क खे जेको जी आज़ादी जे हवाले सां ख़ूबसूरत ॿारनि जेको आहे ख़िताब कयो ऐं पंहिंजे मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी ॿुधाई ऐं ॿार एतिरा ख़ुशि हुया जो तव्हां सोचे नथा सघो। त अॼु असांखे ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, तमामु वॾो ॾींहुं आहे ऐं तमामु घणो ख़ुशि आहियूं नेमत साईं।
3: वॾी महिरबानी सर असांजा हनीब सुहाग साहब, तव्हां जनरल सेक्रेटरी आहियो आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा ऐं सीनियर सहाफ़ी बि आहियो, माशाला ज़बरदस्त तव्हां ॼाणनी सर, तव्हांखे असां वरी बि तव्हांजो शुक्रिया अदा कयूं पिया तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। अॼु असम असांजो सीनियर सहाफ़ी ऐं आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा जनरल सेक्रेटरी तमामु बहितरीन इंसान हनीब सुहाग सां ॻाल्हि ॿोल थी ऐं बिल्कुलु इहा साईं जा हक़ीक़त आहे त असांजो मुल्क पाकिस्तान जेको आहे उहो आज़ादु मुल्क आहे ऐं उन्हनि खां पुछी ॾिसो आज़ादीअ जो त जेके वीचारा पाबंदियूं आहिनि जंहिं ते ऐं उहे आज़ादु न आहिनि त वतन सां मुहबत बि जेका आहे ईमान जो हिसो आहे ऐं हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मुहबत हूंदी आहे ऐं इहो फितरी अमल आहे। इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो उहा मिटी उन जे माउ जो रुतबो वठे थी ऐं हर नेक ऐं साले ॿार पंहिंजी माउ सां लाज़वाल मुहबत कंदो आहे ऐं असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं तॾहिं वतन जी मिटीअ जी ख़ुशबू असांजे मन खे मुअत्तर करे छॾींदी आहे। छो त ज़िंदगी जो नाम, ज़िंदगीअ जो रुतबो, ज़िंदगीअ जो मान ऐं शान वतन जी धरतीअ सां ई हूंदो आहे। त साईं मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त असांजो प्यारो मुल्क वतन पाकिस्तान आज़ादु आहे ऐं असां अॼु पंहिंजे मुल्क वतन में आज़ादु आहियूं ऐं बिल्कुलु थधी हवा में, थधी फिज़ा में असां घुमूं फिरूं पिया ऐं ॿारनि जा जोश ख़रोश ऐं जेके असांजे मुल्क में हर शहर में नंढे वॾे में रैलियूं, प्रोग्राम, टेबला ऐं तकरीरूं ऐं ॿारनि जो जेको कपिड़नि पाइण जो जेको अंदाज़ आहे उहो तमामु बहितरीन आहे। अॼु ईद जो ॾींहुं आहे, ईद जी ख़ुशियूं आहिनि त अलाह सीमा ख़ुशि करे असांजे तरफ़ां जशन आज़ादी जूं सभिनी खे मुबारकूं जाते असांजो आवाज़ वञे पियो झंग झर में वस्ती वाण में जबल में कचे में पके में जिथे भी असांजो ही आवाज़ मुंझ वञे पियो ऐं मां जो मेज़बान नेमतुल्ला जुणे जो असांजी जेका टीम आहे जी एफ एम 88 जी जेका टीम आहे मूं सां गॾु आमिर जागीरानी बलोच आहे अब्दुल्ला चन्नो आहे रिज़वान शेख आहे असांजे तरफ़ां सभिनी खे वरी बि लख लख वाधायूं जशन आज़ादीअ जूं मुबारकूं।

जी हां समन प्रोग्राम आज़ादी जा रंग खुसूसी प्रोग्राम है जशन आज़ादी हवाले से 14 अगस्त के हवाले से तवां असां दे मुबारकूं लिखी मोकले सको था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में तवां असां दे राइट ऑप्शन में इंदो मोबाइल जे में उते एल आर के लिखी स्पेस डई तवां पांजो नालो पांजे गोठ नालो सेंड कंदो तवां असां दे 8881 ते जी एफ एम 88 जी जेका आई डी आहे फेसबुक जेको पेज आहे तवां उन ते बि असांजा नाला मोकले सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे तव्हां हुन ते बि पंहिंजा नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0333221322888। त समय 10:30 बजे वरी असां हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं, कॾहिं बि न वञिजो, वापसि ज़रूर ईंदासीं।

0: It's 10:30 a.m. This time check.
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और

जीअं असमें प्रोग्राम आहे आज़ादीअ रंग जो वक़्तु पहुचे बि पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर वरी अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत लाइ जुड़ियो ॾींदा इजाज़त अलाए निगहबान पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी,
2: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
3: हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाखर। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। तो इस यौम आज़ादी पे मेरा एक छोटा सा पैगाम सिर्फ ये है कि मिलजुल के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी होके सोचें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: खुशखबरी, खुश

0: साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिल जान
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील हाशमी और इस 14 अगस्त को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम नौजवान भाइयों को भी, जो छोटे हैं उनको भी, जो बड़े हैं उनको भी, कि जहाँ तक हो सके इस मुल्क में अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में मोहब्बत और अमन की बात को फैलाएं।
3: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4। पाकिस्तान बनाने वाले
5: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
1: पाकिस्तान बनाने वाले
6: सन 1872 में कराची में पैदा होने वाले सर अब्दुल्ला हारून तहरीक आज़ादी के उन रहनुमाओं में से एक थे जिनकी शबाना रोज काविशों की बदौलत सर जमीन पाक का हुसूल मुमकिन हुआ। सर अब्दुल्ला हारून की अवामी खिदमत का आगाज सन 1913 में कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शमूलियत से हुआ। लोगों की खिदमत करते करते आखिरकार सन 1917 में उन्होंने अमली सियासत में कदम रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। सन 1924 से सन 1926 तक उन्होंने मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी खिदमत अंजाम दी। सर अब्दुल्ला हारून जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियों से मायूस होकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जिससे वो मरते दम तक वाबस्ता रहे। उन्होंने मुसलमानों की माशी, तालीमी और माशरती तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि बड़े सगीर पाक और हिंद का हर मुसलमान तालीम याफ्ता और माशी एतबार से मुस्तहकम हो। सर अब्दुल्ला हारून ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस सालाना इजलास का भी हिस्सा थे जो 23 मार्च सन 1940 को लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसके अख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बड़े सगीर में मुसलमानों के जुदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही।
1: पाकिस्तान बनाने वाले
5: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
1: पाकिस्तान बनाने वाले
7: हर तान पाकिस्तान,
8: अफसार अहमद के साथ।
9: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए आवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लिसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसीकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राथर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसीकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि اس پر آنکھ جو اٹھی ہے خود برسوں تک روئی ہے، اس کا تصور، اس کا خمیر ایمان اور وفا کا ہے، پاکستان کو سمجھو لوگو، پاکستان خدا کا ہے۔

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 79वां जश्न आज़ादी जो ॾींहुं क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहुं जी शुरूआति कई वई। मुल्की सलामती ऐं खु़शहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरी वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तक़रीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

0: अमेरिका तरफां पाकिस्तानी क़ौम खे आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परडे॒ही वज़ीर मार्को चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गडि॒यल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां भाईवारी मज़बूत दोस्ती वारे अज़म जो बि वर्चाउ कयनि था। नॉर्वे जे परडे॒ही वज़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। गैर क़ानूनी हिजरत ऐं पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नक़वी चयो आहे त पाकिस्तानी क़दमनि सां यूरोप में गैर क़ानूनी हिजरत 47% घटि थी आहे। गैर क़ानूनी हिजरत ख़िलाफ़ क़दमनि जी यूरोपी यूनियन बि साराह कई आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी ऐं दुनिया आॾो बि भित बणियल आहे। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे गॾिजी कम करणो पवंदो। अमेरिका जूं ईरान ते वधीक सख़्त ऐं ख़तरनाक मुआशी पाबंदियूं लॻाइण जो ऐलान। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त तेहरान ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम खणणु वञी रहिया आहियूं जेके दुनिया पहिरें कॾहिं न ॾिठा हूंदा। अमेरिकी नायब सदर जे चयो आहे त ईरान सां जंग में पहिरीं तरजीह तेल जूं क़ीमतूं घटि रखणु आहे। मुतहदा अरब इमारतनि जो ईरान ते आबना हर्मुज में ॿिनि बहरी जहाज़नि ते हमले जो इल्ज़ाम। UAE पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त ईरान आबना हर्मुज में अबू ज़ेबी नेशनल ऑयल कंपनी जे ॿिनि बहरी ॿेड़नि खे निशानो बणायो आहे। हमले जे नतीजे में कंहिं जी बि ज़ख़्मी थियण जा इतलाउ नाहिनि मिलिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ

0: सोना से है कामयाबी। स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आ किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 जश्न आज़ादी जो कौमी ॾींहुं ऐं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआति कई वई। मुल्की सलामतीअ ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

0: सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी के मौके ते रैलियूं तकरीबू बेड़ाका कराची हैदराबाद सखर लाड़काने मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जो रैलियूं बदीन खैरपुर नवाबशाह सांगर ठट्टो टंडो मोहम्मद खान बेन शहर में तकरीबू कनकोर टंडो जाम तलार नबीसर रोड टंडो आदम फेसगंज वगुण बेन शहर में रैलियूं दादू मिठी खैबर खिपरो समारोह बेन शहर में भी जश्न आज़ादी जो तकरीबू कोटाई हुई तकरीबन दौरान झंडा फड़काए केक काटा व्या शागिर्दन पारा टेबलोज भी पेश किया व्या।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिये जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
5: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी

0: सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331-252-5786
2: जी हाँ 210-31-52-786
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद जश्न आजादी के जोश में अव सण गड अवो आर जे यूनिस बकारी अमा बुध पे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क ओगी जनाब जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जी ये जगह पेश कियो ता के थी लगे तमा जरूर अस के बुधाई जो छकण जो जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क ज आजादी जो जश्न मल्हाए पियो पूरे पाकिस्तान में जश्न आजादी जो जोश है अवां किथे किथे आयो कड़े हाल में आयो कड़े अहवाल में आयो कड़ी स्टेशन के नमल कनायो पिया उन जे लाए तवां के असन नंबर दींदासी जेते ता कॉल कंदा नंबर हुंदो असन जो जी हां 03133111185 बुड़ी 3111335 इो बुधाए सको था तवां अज आजादी के हवाले से किथे किथे घुमी रहा है डिसन टॉपिक हों घुमण किथे घुमो पे वो अस बुधाई सको था छो तो बुधाण सा अस यो फायदो थो खबर पवी तज असा सफर में बुध पे जैसे अवं के न घुम वो मौको मिले घुम जो आजादी के ढी के हवाले से अज ते घुमी रहा आयो किथे घुम चाहो था किथे घुमी सको था नंबर एक दफो बीहर नोट कजो जो ठीक जो इंदर कमर्शियल ब्रेक हों उन कॉल्स वस तो उन नंबर है 03111333111185 जी नंबर एक दफो बीहर नोट कर 03133111185 बुड़ी 313 टेटी 111 86 ओके जनाब जी जनाब 03133111185 सो बुड़ी 3111185 यो नंबर है एक दफो बीहर नोट कजो करेक्शन थोड़ी दुरुस्ती हूँ तो 03133111185 बुड़ी 313 टेटी 111 85 कॉल वी कॉल वी ताण हाल अहवाल कंदी हाल अहवाल में तवा का पुछंदी अज जश्न आजादी के जोश में तुम किथे किथे घुमो पे ही हू हाल अहवाल पर फिलहाल कमर्शियल ब्रेक है कमर्शियल ब्रेक का वापस जी ईंदी तीन तवा सा कदासी अज आजादी जो गाल जश्न आजादी जो गाल जश्न आजादी के जोश में तुम गड गड रहो तुम जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवजो यूनिस बकारी गुद

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली GAFM सकरंड GAFM मटियारी ऐं GAFM मेहरापुर जो गडियल आवाज वतन अज़ीज़ जो जोश ऐं आज़ादी जो जोश ऐं असां सभई आज़ादी खे वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहिया आहियूं। अवां जेकॾहिं असां साण पंहिंजे मोहबतुनि जो इज़हार करणु चाहियो था, ॻाल्हाइणु चाहियो था, त असांजो नंबर आसान आहे, नंबर नोट करे वठो 031-333-1185 सो उन ते कयो काल ऐं कजो हाल ऐं अहिवाल। अॼु आहे जश्न आज़ादी जो जोश ऐं पूरे पाकिस्तान में इंतिही ख़ूबसूरत तरीक़े सां इंतिही शानदार तरीक़े सां शान ऐं मान सां असां पंहिंजे प्यारे वतन पाकिस्तान जे आज़ादी जो ॾींहुं मल्हायूं पिया ऐं शुक्र अलहमदुल्ला असां उहे ख़ुश नसीब क़ौम आहियूं जिन खे आज़ाद मुमलकत नसीब थी। वतन अज़ीज़ जी आज़ादी यकीन असां पाकिस्तान वासियुनि जी नसीब जे हवाले सां वॾी ख़ुश नसीबी आहे जो अॼु असां पंहिंजे प्यारे वतन जी 79 सालगिरह मल्हायूं पिया, यानी असांजी आज़ादीअ खे तकरीबन जेको आहे 79 साल थी चुका आहिनि ऐं असां 79 साल आज़ाद क़ौम तौरु गुज़ारिया आहिनि, असांजी वॾी ख़ुश नसीब। त पोइ मज़े सामाइन अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं ऐं अवां असांखे बिल्कुलु कॉल करे असां सां शामिल थी सघो था। असांजो ॿियो जेको नंबर आहे उहो नोट करे वठो जंहिं ते तव्हां कॉल कंदा 0331-252-5786 ॿ नंबर तव्हांजे लाइ बिल्कुलु खुलियल रहंदा जिन ते तव्हां असांखे कॉल करे सघो था 0331-252-5786 ते बि तव्हां कॉल करियो ताकि असीं अवां सां अॼु दिलि जी ॻाल्हि बि करे सघूं। अॼु सॼे पाकिस्तान में हर शहर में बिल्कुलु ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि आज़ादी जा ऐं जेकॾहिं तव्हां शहरनि में वेंदव त शहरनि जा जेके बि काफ़ी अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिन खे सींगारियो वियो आहे, सरकारी इमारतुनि ते जेके आहिनि उहे रंगीन बल्ब लॻाया विया आहिनि, रंगीन झंडियूं लॻायल आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके शोपीस नसब कया विया आहिनि लॻाया विया आहिनि, जंहिंजे करे अॼु पूरो पाकिस्तान झरकी रहियो आहे ऐं मुरकी रहियो आहे। प्यारा ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे बेज लॻल आहिनि ऐं इंतिही सुहिणी ड्रेसिंग करे अॼु प्यारनि ॿारनि मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में पार्टिसिपेट कयो। जेके स्कूल तयारी जिन कई, काफ़ी ॿार हुआ जिन स्पीचिस में तयारी कई, किन मिली नगमनि जी तयारी कई, किन ॿारनि मुख़्तलिफ़ जेके शोज़ हुया, PT शो, मार्च पास्ट, जिमनेस्टिक शोज़, मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जी तयारी हूंदी आहे ऐं अवां ॼाणो था त काफ़ी अहिड़ा बि स्कूल आहिनि जेके स्कूल तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका मार्च पास्ट कंदा आहिनि, PT शो कंदा आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु हू जिमनेस्टिक शोज़ बि कंदा आहिनि। सो केतिरा ई स्कूल आहिनि जिन जी इहा पेशकश रही ऐं अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त हर ज़िले हेडक्वार्टर, तालुके हेडक्वार्टर में तमामु इलाइक़ा जेके आहिनि उते अॼु क़ौमी झंडे खे फड़कायो वियो ऐं पुलिस जे चाक चौबंद दस्तनि अॼु वतन अज़ीज़ जे झंडे खे सलामी ॾिनी ऐं उन सॼे सारे ख़ूबसूरत मंज़रनि खे अञा बि तव्हां सां कंदासीं शेयर। पर फ़िलहालु वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ऐं मिलंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। केॾे न वञो

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

आज़ादी जो ॾींहुं क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआत थी। मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहालीअ लाइ ख़ुशूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जशन जूं तक़रीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

कराची में मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली पाक नेवी जे किड्स गार्ड जूं ज़िमेवारियूं संभाले वरितियूं। वॾे वज़ीर सैद मुरादरी शाह गवर्नर ऐं काबीना मेंबर सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी, गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ घुरी। आईजी सिंध बि पुलिस आफ़ीसर सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरी। सियासी समाजी अॻवाणनि ऐं शहरनि जे मज़ार क़ाइद ते आमद जारी आहे।

बात डिनी वही। ISPR मूजिब समूरन खतरन के मुंह डेण ए वतन की दिफा वारो अजम बरकरार है। कौम सा गड़ी हथियारबंद फौज अमुन ए इस्तकाम लाए साबित कदम रहंदी।

0: 300 साल पहले साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त, कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते, अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सुबह ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सुबह सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊं कि ये आईनी तरीका है, सुबह सिंध की असेंबली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, सौ बिस्मिल्लाह सौ बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार है। जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, कौन सी फंक्शनल लीग या जीडीए,
1: दोनों
0: जो कभी मुश्तरका अलग अलग ही है। मतलब मुझे तो आपके सवाल ही समझ, छोड़े यार इन लोगों को, अब ये पुराने लोग हैं, अब आगे की तरफ चले।
2: सूबो ठाहिण वारो बहस पुराणो आहे, जेकॾहिं कंहिंखे एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबलीअ मां ठहराउ पास कराईंदो। असां सिंधी हिफ़ाज़त कंदासीं, वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ार काए ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त असां सियासत खे नाकाम नथा समझूं, सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परे भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। सिंध असेंबली सूबे जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257866।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
5: सुनते रहो GAFM 90.4.

जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद। अॼु जश्न आज़ादी जो जोश आहे ऐं जश्न आज़ादी जे जोश में जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे जी एफ एम मातली 90.4 जी एफ एम सकरंट जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मेहरापुर जे स्टूडियोज़ मां अव्हां यकीनन शो ॿुधो पिया ऐं शो में अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर ऐं आहियां अव्हां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। ॿियो ख़बर चार भला अव्हां जो वक़्तु कीअं पियो गुज़िरे। यकीनन अव्हां बि हूंदा जोश ऐं जज़्बे सां ख़ुशबाश हूंदो। जेकॾहिं हा त असांखे हाणे ई कॉल करियो। नंबर असांजो आहे 0331252578 ॿुड़ी 331-25-75-786। इन नंबर ते तव्हां असांखे कॉल कयो ऐं अॼोके हिन ख़ुशीअ वारे जोश जज़्बे वारे प्रोग्राम में तव्हां बि असां सां शामिल थी सघो था।

0: जी जनाब, सो बिल्कुल अवानी कॉल्स वसूल करने के लिए असी रेडी आयो है। निसू ता असस अगर कॉल ते केर मौजूद आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाजी लद बकरी, केरा हाल सही?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अवानी दुआ है ता खुश आयो, ठीक आयो, चंगा भला।
1: दुआ है वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, भाजी लद बकरी जिंदाबाद, इंदर फम जी होयो मतली जिंदाबाद।
0: मेहरबानी, लख तोरा खुश हो जो, आबाद हो जो, अवां भी जश्न आजादी जे अवां के खोड़ सारे मुबारक।
1: खैर मुबारक हो, अवां के भी मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान के मुबारक हो, पाक फौज सिंध पुलिस के भी मुबारक हो।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कौम के, पाक फौज के, सभी के अवां जो मुबारक हो पहुंचायूं पे। तव्हां केर साहब है, किथां खां?
1: जी हकमनी आलो में गालाया ते फतेहपुर जिलो टंडो मोहम्मद खान का।
0: जी केड़ा हाल है अवां जा, तबीयत कीअं? टंडो मोहम्मद खान जी मौसम कीअं?
1: शुक्र अलहमदुल्ला, फर्स्ट क्लास है, वी वी आई पी जाड़ो लगो गया, मस्त मस्त मौसम लगी भी है।
0: तमाम घणी मेहरबानी कॉल करण जे लाए, जश्न आजादी जो सभी के मुबारक हो जन।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक,
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लख थोरा। ओके जनाब, दिसंदासी त हाणे असन गड कॉल ते केर आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, साईं जश्न आजादी मुबारक।
0: साईं खैर मुबारक, केर साहब है, किथां खां? जी असांजी आवाज़ ई दुनिया जो दोस्त गुलाम कादर घिराणो साहब, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? जी जी अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे, अलाह पाक जा अहसान आहिनि। कीअं पई भला जश्न आज़ादी मल्हाइजे?
2: तमामु बहितरीन नमूने सां आज़ादी खे मल्हाइजे, काफ़ी दोस्त बि मौजूद हुआ, मोहम्मद खान महरी, दोस्त मीर मुल्क वाडो, फकीर अब्दुल मौजूद हो, माशाल्लाह काफ़ी दोस्त, रबनवाज खासकिरी बि मौजूद हो।
0: जी जी जी जी,
2: असां सुबुह जो अखि खोली वेंदी कंहिंजी स्टाफ ते पहुतासीं, रोड जी नगर पब्लिक रोड ते
0: यकीनन बिल्कुल, अॼु पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जो जोश आहे, ऐं सभई शहर जेके आहिनि वाइण वस्तियूं सिंगारिया विया आहिनि, ऐं ॾाढो महिरबानी तव्हांजूं। ऐं जेकॾहिं अॼोके ॾींहं ते तव्हांखे टूअर ते वञण जो मौको मिले त तव्हां किथे घुमणु पसंदि कंदा? हा पोइ पूरी सिंध घुमजे, जेकॾहिं ख़र्च हुजे त महांगाई आहे हिन जे करे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच लख थोरा, साईं मोहबतूं तव्हांजूं, महिरबानी महिरबानी लख थोरा। जी जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे असां सां कॉल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब है, किथां खां?
3: नज़र सोलंगी ॻाल्हायां, छुटो कान सोलंगी लाइ मातली आहे।
0: जी छा हाल आहे नज़र मोहम्मद सोलंगी साहब, अॼु जश्न आज़ादी जूं तव्हांखे खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, तमामु घणी महिरबानी, कीअं पियो वक़्तु गुज़रे तव्हांजो?
3: जी सर,
0: वक़्तु कीअं पियो गुज़रे? जी शुक्र अलहमदुल्ला, तॾहिं त तव्हां साण मुखातिब आहियां। अॼु बिल्कुलु ईद जो ॾींहुं लॻो पियो, ख़ुशि लॻा पिया आहियूं, छो त जेको आज़ादी जी ईद हूंदी आहे न, उहो जोश ऐं जज़्बो ॾाढो शानदार हूंदो आहे। जी जी, महिरबानी लख थोरा, लख थोरा, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, असां साण गॾु तव्हां बि शामिल थी सघो था, नंबर आहे 0331252578 6। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब आहीं, किथां खां? जी गुलाम रहीम चांग। जी जी, किथां पिया ॻाल्हायो? आवाज़ कोन पियो अचे मिठा भाउ। जी जनाब कॉल ड्रॉप थी वही है आवाज न अचने करे। थैंक यू वेरी मच अगेन मां सबनी के जश्न आजादी यू मुबारक पेश कयां तो उम्मीद है ता बिल्कुल खुशबाश हुंदो जी मु अज गाल पे कही ता जी पूरे पाकिस्तान जे हर नंडे वडे शहर में शहर सिंगारे वेन रोड रस्ता इन ताही खूबसूरत तरीके से साफ सुथरा कया वेन स्कूलन में अज कौमी दिहाड़े के वडे जोश जज्बे से मल्हायो पियो वञे जॾहिं त सरकारी इमारतूं ऐं गैर सरकारी इमारतूं उन्हनि खे कलरफुल लाइटनि सां सिंगारियो वियो आहे। पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो जोश ऐं जज़्बो आहे जेके पॉइंटूं आहिनि घुमण जूं जेके टूअर जूं पॉइंटूं आहिनि टूअर जे पॉइंटुनि ते बिल्कुलु हिकिड़ो सुठो माहौल जुड़ियल आहे ऐं माण्हू जेके थर घुमण वञी रहिया आहिनि के माण्हू कश्मीर घुमण वञी रहिया आहिनि के कारूंजर घुमण वञी रहिया आहिनि। सो बहरहाल ॾिसूं था केरु असां गॾु हलो। अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब ऐं किथां खां? जी जी भा खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे अॼु जश्न आज़ादी तव्हांखे खोड़ सारियूं मुबारकूं
3: हुजनि।
0: महिरबानी महिरबानी लख थोरा तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी जी जी महिरबानी महिरबानी खुश हुजो आबाद हुजो थैंक यू कॉल करण जे लाइ। जी जनाब ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: भाईजान रेडियो जो आवाज़ घटि कयो थोरो रेडियो जो आवाज़ घटि कयो। जी केरु साहिब ऐं किथां खां? निसार अहमद जत साहिब खुश आयो ठीक आयो चङा भला मतारा जोड़
4: साईं अलहमदिल्ला
0: खैर मुबारक जी जी सॼी सिंध सॼे पाकिस्तान पूरी दुनिया खे जश्न आज़ादी मुबारक हुजे ऐं असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जो अॼु 79वां जश्न आज़ादी ॾींहुं आहे ऐं उन में पाण सभई अॼु ॾाढे जोश ऐं जज़्बे सां आहियूं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जत साहब? भाभी ॿुधे पई प्रोग्राम खे? अच्छा ठीकु आहे लख थोरा असांजी प्यारी भेण जूं महिरबानियूं आहिनि जो उहा ॿुधे पई तव्हां ॿुधो पिया लख थोरा साईं। महिरबानी महिरबानी ख़ुशि हुजो आबाद हुजो महिरबानी। ओके जनाब यूनुस बकारी जो साथ जारी आहे ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज़ में अवां जी कॉल्स जी अचण जो सिलसिलो ॾिसूं था हाणे कॉल ते केरु आहे असां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी गुलाम कादर किरानो साहब यकीन ॿुधे पियो ऐं रेडियो ते हाणे कॉल बि कई हुई ऐं हाणे बि ॿुधंदो हूंदो तव्हांजो मुबारकूं पहुचायूं था मिठा माण्हू महिरबानी। जी हाकिम महिरबानी मिठा साईं। ओके जनाब अॼु अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं कयूं पिया ऐं लख थोरा उन्हनि समूरनि महिरबानी जा जेके कॉल्स करे रहिया आहिनि। नंबर हिकु दफ़ो ॿीहर मां रिपीट करियां 0331252578 ॿुड़ी 331525786 हिकिड़ो इहो नंबर आहे। इन खां अलावा असांजो ॿियो नंबर आहे 0313331185 ॿिन्ही नंबरनि मां जंहिं नंबर ते कॉल कंदो तव्हांजो नंबर कंदासीं रिसीव। तव्हां सां कंदासीं हाल अहिवाल छो त अॼु आहे आज़ादीअ जो जोश। अवां हिन महिल कनाए रहिया आहियो GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे चार रेडियो स्टेशननि खे। जी हा हिकु ई वक़्तु GFM मातली GFM मटियारी GFM सकरंड ऐं GFM मेहराबपुर ते गूंजंदड़ ही आवाज़ अवां जो पंहिंजो ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। साईं पासे में रेडियो वॼे पियो हुन आवाज़ घटि करियो या हुन रेडियो खे परे करियो। जी जी रेडियो रेडियो जो आवाज़ डबल पियो थिए थोरो हुनखे परे कयो। जी केरु साहिब ऐं किथां खां? कुर्बान कश्मीरी साहब खुश आयो ठीक आयो चङा भला
5: साईं अलहमदिल्ला सभु ख़ैर ठीकु ठाक तव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि।
0: ख़ैर मुबारकूं तव्हांखे जश्न आज़ादी जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं
5: हुजनि।
0: अवां सां गॾु ॿियो रेडियो केरु थो ॿुधे साईं?
5: साईं मुंहिंजी नंढड़ी छोकिरी आहे दुआ नालो आहे।
0: दुआ बेबी दुआ खे बि जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। जी जी थैंक यू बेटा थैंक यू लख थोरा। عثمان غنی کے کھوڑ سارے ہوں جشن آزادی مبارکوں تمام گھنے مہربانی کشمیری صاحب لکھ تھوڑا تاں جوائن کیو ائی کال کی محبتوں خوش ہو جو آباد ہو جو مہربانی لکھ تھوڑا جی عزیز خواتین حضرات جشن آزادی کے جوش وارے ان شاندار پروگرام میں اواں سان یونس بکاری مخاطب ہوندو انیا بد کلاگ جو ساتھ ہوندو اواں ہکی وقت جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کے جی ایف ایم ماتلی جی ایف ایم مہراپور جی ایف ایم مٹیاری جی ایف ایم سکرنڈ تھی شو بدھو پیا مجھے نالو یونس بکاری ہے اواں جو نالو چھا ہے ان کمرشل بریک کا پوئے کال کرے ضرور بدھائی جو نمبر ریپیٹ کرس ان کمرشل بریک کا پوئے تیسی تھی ونجو کے دن باقی گالیوں واسا کبیو ان بریک کھا پوئی

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद। हाने इन जो अन्याब वधीक मान वधायण लाए तवासा गड़ आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताईं दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4.

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क तरफा आजादी जो जोश आजादी जोश ए जज्बे से मल्हाईजंदड़ अजो के दी के यकीन पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है अड़ी रीत जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क तमाम सुने नमूने सेलिब्रेट कर रो है तमाम घणो जोश ए जज्बो है जैसे तुम मुख्य बुध पे बुधाईंदा हलो तो एक ही वक्त जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफएम मातली जी एफएम मटियारी जी एफएम मेहरापुर जी एफएम सकरंड स्टूडियोज में ये शो अवानी खिदमत में पेश थी रो है जैसे तुम असा बुध पे तो कॉल कर सको था जी हाँ असो नंबर नोट कर वो 0331252578 6 बुड़ी 331 पंजवी 786 यो नंबर है बो जो को नंबर है वो है जी हाँ 0313331185 बुड़ी 3133115 ये असा ब नंबर जी तोट कर वो कॉल कर बुधा सको अजो को अवान जो दी कि पे गुजरे हाँ अज पूरे पाकिस्तान में जोश ए जज्बो है ढो सुनो माहौल लगो पे काफी मेहरबानी असा बुधन पे जिन जिन मेहरबानी असा जिते जिते ज्वाइन किया सभी जो मेहरबानी सभी जहा वा वा सभी जहा किरोड़े किरुब जो तसा शामिल चुका है सो जनाब यकीन असा पूरी दुनिया जहा खुशनसीब असा वह कौम आयू जका पाकिस्तानी कौम है अज आजादी साण असा पे वक्त गुजारू पे दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरों ए भायरों आजादी जो जैसे अवे एहसास वो है तो पिंजरे में बंद उन कैदी उन पखी का पुछो तो आजादी थी या तवे आजादी एहसास पुछणो है तो जेल में बंद कें मू का पुछो तो उनको कैद कि गुजरे जैसे आजादी तक एहसास पुछणो है तो उन शख्स का पुछो जो कड़न में कैद है पर जैसे आजादी जो असल मजो है वो यो है तो पान सब आजाद आयो अलहमदुल्ला खुश गुजारू पे कॉल अची चुकी है ऐसा केर है असा गड हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का नालो छाए साईं अर्जन राठौड़ खुश आयो ठीक आयो हाँ जश्न आजादी मुबारक हुए खैर जो मुबारकू खैर जो मुबारकू मेहरबानी शुक्र है हेलो अस्सलाम वालेकुम केड़ा हाल है खुश आई जी जी शुक्र है ठीक है तुम ठीक हो अच्छा बिल्कुल ठीक हो जो अल्लाह करे खुश हो जो मेहरबानी हाँ खैर मुबारकू तहां के जश्न आजादी जे ईद जो मुबारक हुजन थैंक यू नालो बुध नालो छाए तवां जो तो जो नालो छाए वरी बुधा हां हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक आ मेहरबानी मेहरबानी साईं लख थोरा साहब हाँ शुक्र शुक्र मौलवी साहब खुश हुजो मेहरबानी लख थोरो अला करे आबाद हुजी मेहरबानी ओके जनाब यूनस बकारी जी महफिल अवांजा जारी सारी असो बाकी 15 मिनट जो साथ है चार लगी 44 मिनट थे ठीक थोड़ी देर नरो शॉर्ट ब्रेक हों वरी वो कालू वटा कि वो छो तो प्रोग्राम है जारी सारी एकड़े नंढड़े ब्रेक का वापस इंदो अवो यूनस बकारी तेसी तई अस गड रहो हाँ दोस्तों पाकिस्तान जिंदाबाद जो गालू कदासी ओके जनाब जी जनाब पर कॉल उन दौरान अची रही है सो मैं कॉल अटेंड करने की कोशिश क्या तो दिसूं था कॉल तो केर हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का रिजवान साहब खुश आयो अलहमदुल्ला दुआ लगी पई है जश्न आजादी खोड़ सारी मुबारक हुजन खैर मुबारक मेहरबानी लख थोरा साईं तवा सा केर केर पे बुधे घर वाला घर भाती बुधन पे अच्छा थैंक यू जी छाते चयो तवा मिली नगमो बिल्कुल बुधरायो ता हाने एकडो नडो कमर्शियल ब्रेक है उनका मिली नगमो बिल्कुल बुधरायो ता थैंक यू मिठा माण्हू, खुश हुजो, आबाद हुजो, लख थोरा तव्हांजा। अव्हां असां सां गॾु रहिया आहियो ऐं असां सां गॾु हुजो, तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं हाणे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहिब पिया ॻाल्हायो? छा हाल आहे गुल मोहम्मद खासकेली साहब? खुश आहियो, ठीक आहियो, जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, ख़ैर मुबारकूं, महिरबानी। लख तौर अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: मुंहिंजो भाइटो अली हसन खासकेली।
0: ॿियो केरु आहे? अली हसन खासकेली थो ॿुधे बसि। महिरबानी, तव्हां सभिनी जो, तव्हां सभिनी खे जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी जनाब। इन ते ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे, बिल्कुल ब्रेक वठूं था ऐं बिना ब्रेक बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं केॾनि वंच।
2: अजरक के रंगो से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ो से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 ॾींहं जश्न आज़ादी क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआत मुल्की सलामती ऐं खु़शहालीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तक़रीबूं आज़ादी जी खुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि नारियुनि ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहियूं सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: गुलन जी चादर चाढ़ी दुआ घुरी आईजी सिंध भी पुलिस ऑफिसर सा गड मज़ारे कायद ते हाजिरी भरी सियासी समाज अगवाणन शहरी मज़ारे कायद आमद चाढ़ी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो नथियन और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल

0: मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
2: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याप वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
10: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, वजीर आजम सदर के आजादी वाले दिहाड़े की मुबारक डिनी, हर तारीखी दिफाई मक्का माहदे का आगाह किया, दिफाई माहदे लाए नेक ख्वाहिशन जो इजहार कदे वजीर आजम में फील्ड मार्शल की कोशिश के सराहो, फौज ए कानून लागू कदड़ अदारन के पेशावरान सलाहियतन के तहसीन, मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे जो अज़म, सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा इलाकई सूरत हाल के नजर आडो रखंदे अवाम के रिलीफ डेण की जरूरत से जोर भरीदे आम वाइपे वाले शयन की बिना रंडक के फरामी ए मुनासिब अघन दस्तियाबी यकीनी बनाई वाले

कराची में मज़ारे काए ते गार्ड जी तब्दीली जी पुरवकार तकरीब पाक ने वीजे कैडेट्स गार्ड्स जो जिम्मेवारी संभाले वरतूं वडे वजीर मुआद अली शाह जी गवर्नर काबीना मेंबर सा गड मज़ारे काए ते हाजिरी गुलन की चादर चाढ़ी दुआ घुरी आई जी सिंध भी पुलिस ऑफिसर सा गड मज़ारे काए ते हाजिरी भरी सियासी समाज के गणन शहरियन की मज़ारे काए आमद जारी।

0: मुर्गाबाड ते जश्न आज़ादी जी पुरवकार तकरीब क़ौमी तराने सां तकरीब जी शुरुआत खां पोइ पाकिस्तान जिंदाबाद ऐं नारा तकबीर जे नारनि जी गूंज गुलवतनी जे जज़्बे सां सचा औरतुनि ऐं ॿारनि सूधो अवाम जी वॾी अंग में शिरकत पंजाब रेंजर्स जे जवाननि शानदार परेड जो मुज़ाहिरो करे दुश्मन ते ख़ौफ़ तारी करे छॾियो झंडा सिंह बॉर्डर ते बि जश्न आज़ादी जी तकरीब दौरान पाकिस्तान रेंजर्स जे जवाननि जी शानदार परेड मुल्की सियासी क्यादत क्यों आज़ादीअ जी 79 ॾण ते क़ौम खे वाधायूं क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत समूरनि बानियुनि खे भेटा पेश सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त 14 अगस्त आज़ादीअ लाइ ॾिनल क़ुर्बानीनि खे यादि करण जो ॾींहुं आहे सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कमु करणो पवंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ाइद अज़म जे ॾिनल नज़रिये तहत मुल्क खे खुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो करवज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ादी बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जदोजहद जो समर आहे हथियारबंद फ़ौजनि पारां 79 आज़ादी जी ॾण ते क़ौम खे वाधायूं फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ क़ौम खे मुबारक ॾिनी ISPR चयो आहे त समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जे दिफ़ा वारे असम बरकरार आहे क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमन ऐं इस्तेकाम लाइ साबित क़दम रहंदी
1: 300 साल पहले साईं सताई करे मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम से बात करी सिंधियों की दुआ यही है सबसे पहले हमारा सिंध सरसब तो शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से ये सिंध की मिट्टी है ये सुबह ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सुबह सिंध को कभी नुकसान नहीं हो तो मैं फिर आ जाऊं कि ये आईनी तरीका है सुबह सिंध की असेंबली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है हाँ डिबेट करनी है ऑफिस में सोमवार करें हम जवाब देने के लिए तैयार है।

0: वरे वठी चयो त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे बाबति एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबली में बि ॿ भाङे टे जी अक्सरियत सां ठहराउ मंज़ूर कराए जे डी ए ऐं फंक्शन लीग बि तारीख़ जो हिसो थी विया आहिनि। हाणे अॻिते वधणु घुर्जे।
1: हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अलहमदुल्ला सब इंसान के बच्चे हैं। और जेंजी हमारे यहाँ नहीं होते, जेंजी होते जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे कुछ शाहीन है, नौजवान है, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। हम इंसान है, खूबसूरत लोग है, जेंजी नहीं है, शाहीन है हम।
0: पाकिस्तान में काक्रोच न पर सब इंसान जा बच्चा इकबाल जा शाहीन आहिनि। जेंसी पंहिंजे ई मुल्क में बाहियूं ॾींदा आहिनि ऐं भॼ डा कंदा आहिनि। सिंध जे गवर्नर निहाल लाशमी मज़ार काए ते साफ़ियुनि जे सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त असांजा नौजवान मुल्की तरक़ी में अहम किरदार अदा कंदा, जंग में भारत खे ॾिनल शिकस्त दुनिया खे तयार। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादीअ जे मौके ते रैलियूं, तकरीबूं, रैलियूं ऐं मेड़ाका। कराची, हैदराबाद, सखर, लड़काणे ऐं मीरपुर ख़ासि में जश्न आज़ादी रैलियूं। मदीन, खैरपुर, नवाबशाह, सांगर, टटो, टंडो, मकान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं। कंदकोट, टंडो जाम, तलहार, नबीस रोड, टंडो आदम, फेसगंज, बगड़ ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। दादू, मिटी, केबर, केपरो, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं कोठायूं वयूं। तकरीबन दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया, शागिर्दनि पारां टेबलोस पेश। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान ऐं रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन पारां 79 आज़ादीअ जे ॾींहं ते पाकिस्तानी क़ौम खे वाधायूं। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो त ईरान पाकिस्तान सां लाॻापन खे वधीक मज़बूत बणाइण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे। रूसी सदर प्यूटन चयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31

0: 42842 खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ओके ॾिसो ॾाढो ख़ूबसूरत हिते तव्हां अमली नगमो ॿुधो पिया. हुन खां अलावा असांजे वञण जो टाइम बि बिल्कुलु क़रीब अची पहुतो आहे. सो लास्ट में तव्हां असांजी जेका ही जनरेशन ॿुधे पई, सो इन खे तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदा, छा चवणु चाहींदा?
1: मां वरजाईंदुमि त असांजी जेका नई जनरेशन आहे, मां जेके तव्हां नौजवान आहियो, मां उन्हनि खे हथ बधी गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां जो जंहिं बि डिपार्टमेंट सां वाबस्ता आहियो, तव्हां जॉब कयो पिया, तव्हां पढ़ो पिया, तव्हां कमीशन जे एग्ज़ाम्स जी तयारी कयो पिया, जंहिं बि फील्ड सां तव्हां आयो, पंहिंजी फील्ड सां पंहिंजी ज़ात सां ज़रूरु सचाई कयो. अल्लाह साईं इनशाला ताला तव्हांखे दिन उर्दू में चवंदा आहिनि दिन दुगनी रात चुगनी तरक़ी देगा इनशाला ताला. सो पंहिंजे कम सां तव्हां सचा थींदव त माना हूअ अलाह साईं इंसान खे क़ुरान शरीफ़ में चए थो त मूं पंहिंजी इबादत जे लाइ पैदा कयो आहे. इबादत जो मतिलबु इहो न आहे त असां 24 कलाक सजदे में पिया हुजऊं, नमाज़ुनि में पिया हुजऊं, क़ुरान शरीफ़ पढ़ंदा रहूं, पर हलाल रोज़ी कमाइण बि ऐन इबादत आहे. असां जेकॾहिं स्टूडेंट आहियूं, शागिर्द आहियूं, दिलि लॻाए जेकॾहिं असां पढ़ूं था, तॾहिं इहो बि असांजे इबादत में शामिल. इबादत जो मतिलबु अलाह साईं असांखे इन लाइ पैदा न कयो त असां 24 कलाक अलाह साईं जी इबादत कंदा रहूं, पर असां जेको बि माश कयूं पिया, कमायूं पिया, जॉब कयूं पिया, पढ़ूं पिया, जेकॾहिं असां ईमानदारी सां हर कमु कंदासीं त असांजो उहो जेको कमु आहे उहो इबादत में शामिल थींदो. ऐं असांखे जंहिं मक़सद जे लाइ रब पाक पैदा कयो उहो मक़सदु असांजो पूरो थी वेंदो. मुंहिंजो इहो उहो न विसारियो ऐं उन मक़सद खे वठी करे हलंदव त तव्हां हिन दुनिया में बि कामयाब थींदव ऐं आख़िरत में बि अलाह साईं जे अॻियां तव्हां इनशाला ताला सुरखुरू थींदव. मुंहिंजो इहो नंढड़ो पैगाम पंहिंजे जेंज़ीज़ जे लाइ, नंढड़नि नंढड़नि जेंज़ीज़ जे लाइ.
0: मां बिल्कुलु हिन कन में सफ़ाई
1: मतिलबु ख़राब आहे.
0: न ही मुंहिंजो सही आहे, हेॾा वारो ख़राब. इहो ख़राब ई तव्हांजे हेडफोन्स जी वजह सां थियो आहे. ओके, सो इजाज़त वठूं था तमामु ॿुधंदड़नि सुणनि माण्हुनि खां. वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थींदी सुभाणे वारे प्रोग्राम में. सुभाणे मां 1 बजे वारे प्रोग्राम में
1: इनशाला 1 खां 3 बजे ताईं उहो कमर्शियल प्रोग्राम न हूंदो. ज़ाहिर आहे रुटीन जो जेको प्रोग्राम पहिरियों हलंदड़ हुयो उहो सुभाणे खां इनशाला ताला स्टार्ट कंदासीं
0: इनशाला.
1: बसि पंहिंजे चाचे रिज़वान उल्लाह खे.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
5: शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारिसनि जे मथे ते शफ़क़त जो हथ रखंदे चयो त शहीद असांजे मथे जो ताज आहिनि.
6: पाकिस्तान को आजाद हुए 79 साल हो गए. सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आजादी की सेंचुरी मनाएंगे. मगर आजादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, यह हकूक का वादा था. पाकिस्तान के लोगों से और इन इलाकों और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ का फैसला किया. हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा. हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं. 2047 तक हमारी नस्ल का काम उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना, ताकि मेहनत की कमाई से घर चल सके, नौजवानों को इज्जत का रोजगार मिले. आजादी हर घर तक. जश्न आजादी मुबारक. पाकिस्तान खपे पाकिस्तान.
5: पाकिस्तान खे आज़ाद थिए 79 साल गुज़री विया. 21 वरियनि खां पोइ आज़ादीअ जी सेंचुरी मल्हाईंदासीं. आज़ादी रुगो सरज़मीन हासिल करण जो नालो न, पर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हक़नि जो वाइदो हो. हुननि इलाइक़नि ऐं रियासतनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो जश्न आज़ादी जे मौके ते वीडियो पैगाम. बिलाल भुट्टो चयो त आइन में लिखियल वायदा खे बार बार वरजाईंदा बि आहियूं पर सदाई निभाईंदा न आहियूं. नौजवाननि खे इज़त जो रोज़गार मिले, महिनत जी कमाई सां घर हले ऐं वोट जो एतराम थिए. हू चाहिनि था त हर इलाइक़े खे पाकिस्तान जी तरक़ी में पंहिंजो हिसो मिले.

सिंधी समेत समूर मुल्क में उड़ासियों जश्न आज़ादी कौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोहफ़नि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोहफ़नि जी सलामी सां ॾींहं जी शुरूआत मुल्की सलामती ऐं खु़शहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरी वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं, आज़ादी जी ख़ुशी में केक बि काटिया विया। नौजवाननि नारियुनि गुटनि तोड़ी ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार।

0: डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हा, 231-25-25-786।
3: जीए FM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।
5: It's 8:15 PM.
6: This time check is brought to you by
7: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
8: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
9: ढो सुठो
8: जी FM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़।

साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। अस्सलाम वालेकुम जीएफएम मातली 90.4 जी लाइव स्टूडियोस मां प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन जिसने आज़ादी मुबारक जे हवाले सां तां सां मुखातिब थे आयूं। जेको ही प्रोग्राम असांजो आवाज़ तां ताईं पहुचाइण में मुंहिंजा फनी मददगार स्टूडियो इंजीनियर आहिनि रब नवास ख़ासि कैली। प्रोग्राम जे लाइ स्पेशली हिदायतूं आहिनि स्टेशन मैनेजर सर यूनुस बकारी साहब जूं। दोस्तों तव्हांजा कहिड़ा हाल आहिनि? उमेद था कयूं तव्हां ठीकु ठाक हूंदा पंहिंजनि प्यारनि सां यकीन। 14 अगस्त यकीन असां पाकिस्तान जे लाइ ईद जो ॾींहुं आहे। असांजो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान 14 अगस्त ते आज़ाद थियो। हिन तारीख़ खे असां हमेशह हर साल ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ सां मल्हाईंदा आहियूं। यकीन असां हिकु आज़ाद क़ौम आहियूं। असां पंहिंजी सरज़मीन ते फ़ख़्रु महसूसु कंदा आहियूं। हीअ धरती असांखे असांजे वॾड़नि जी महिनत ऐं हुननि जी क़ुर्बानीनि जे बदौलत नसीब थी आहे। पाकिस्तान जी आज़ादी में असांजे इदारनि जूं बि ख़िदमतूं, उन्हनि जूं बि क़ुर्बानीूं आहिनि, बेमिसाल लाज़वाल क़ुर्बानीूं। पाकिस्तान आर्मी जे जवाननि जूं क़ुर्बानीूं, जेके बि इदारा आहिनि, यकीन उन्हनि सभिनी जूं महिनतूं, कावशूं, क़ुर्बानीूं शामिल आहिनि। उन करे असां फ़ख्रु महसूसु करियूं था। पाकिस्तान असांजो आज़ाद मुल्क आहे, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान। अॼोकी हिन स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हां सां गुफ़्तगू थींदी ऐं आज़ादी जे हवाले सां। अॼोको ॾींहुं ॾाढो ख़ूबसूरत ॾींहुं गुज़रियो आहे, यकीन ख़ुशियुनि वारा समा हुया। पूरे पाकिस्तान जीअं डिस्ट्रिक्ट बदीन मातली जे पसगिरदाई जा जेके बि इलाइक़ा, जेके बि तइलीमी दर्सगाहूं आहिनि, हर गली में पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाईंदाबाद जे नारनि सां ख़ूबसूरत रैलियूं गुज़रियूं, जिन में असांजा नंढा नंढा गुलनि चिड़ा ॿारड़ा बि हुया, जिन जे हथनि में पाकिस्तान जा परचम हुया। सभु परचम ॾाढो ख़ूबसूरत परचम। जॾहिं खां आऊं आयुसि पे जी एफ एम मातली जे तरफ़, असांजे स्टूडियो जे तरफ़, त मूंखे खोड़ सारा रस्ते में उहे माण्हू मिलिया जेके पंहिंजे चिंकचिंक मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, मुख़्तलिफ़ गाॾियूं जेके आहिनि उन्हनि में पाकिस्तान जा परचम लॻाए करे पाकिस्तानी लिबास में झुमिरियूं हणंदे मूं ॾिठा। सो अलहमदिल्ला, इहे अला पाक जूं इनायतूं, करम नवाज़ियूं आहिनि जो असांखे अहिड़ो मुल्क मिलियो आहे। अॼोके ॾींहं ते जिन हिन मुल्क जे लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं, उन्हनि सभिनी असांजे वॾड़नि, असांजे आर्मी जे जवाननि, जिन खे सलाम पेश कयूं था। उन सां गॾो गॾु सभिनी ॿुधंदड़नि खे जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं। यकीन 79 जनम पाकिस्तान जो जश्न आज़ादी 14 अगस्त जे हवाले सां तव्हां सभिनी खे खोड़ सारियूं मुबारकूं। तव्हां सां गुफ़्तगु जारी रहंदी।
تمہاں جا میسیجز تاں جا پیغامن جو اساں کے انتظار ہے موبائل جی رائٹ آپشن میں ونی کرے ٹائپ کندا ایم ٹی ای تھوڑی سپیس دیندا پنجو نالو گوٹھ جو نالو لکھی کرے میسج 8881 تے اساں کے سینڈ کرے دیندا سو ملی نگمو ملی گئی پاکستان جو گیت بالکل پلے تھی چکو ہے ڈاڑھا خوبصورت گیت جن میں پاکستان جو ذکر ہے پانچ وطن عزیز کی گال ہے سبنی پیارن مانن کے جشن آزادی جو کھوڑ ساری مبارکوں

साईं मालूम कंदासीं त असांजो ई मुसाफ़िर आवाज़ कहिड़नि कहिड़नि माॻनि ताईं पहुची पियो, उन जी ख़बर असांखे कीअं पवंदी? तव्हांजे मैसेजनि मां ख़बर पवंदी त असांजो मुसाफ़िर आवाज़ कहिड़नि माॻनि खे छुए पियो।

भेरो ॿीहर भली कार्यूं था सभिनी ख़ूबसूरत समातुनि खे जी एफ एम मातली 90.4 जी लाइव स्टूडियोस मां मोहम्मद ख़ान महरीअ जो हिकु भेरो ॿीहर सिक प्यार उकीर वंदो सलाम क़बूल पवे। जश्न आज़ादी मुबारक तव्हां प्यारनि माण्हुनि खे जिथे जिथे असांजो मुसाफ़िर आवाज़ पहुचे पियो उन्हनि सुंदर समातुनि खे। जश्न आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन में भली कार चवंदासीं हिकु भेरो ॿीहर। सो तव्हां प्यारनि माण्हुनि जे समातुनि मां असांखे ख़बर पवंदी त केरु केरु असां सां जुड़ी चुको आहे ऐं तव्हांजा मैसेजिस जो इंतज़ारु आहे। असांजी अखि जेका आहे उहा कंप्यूटर स्क्रीन ते ॼमी वई आहे, छो त असांखे शिदत सां इंतज़ारु आहे त तव्हांजा सुहिणा सुहिणा नाला अचनि त प्रोग्राम में शामिल करियूं। सो यकीन तव्हांजा नाला ईंदा, उन्हनि खे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। ख़ूबसूरत वतन अज़ीज़ जा मिली नगमा बि तव्हांजे समातुनि जे नाओ कंदा पिया हलूं। मूं पहिरियां ज़िक्र कयो पियो त खोड़ सारा माण्हू जेके आहिनि 14 अगस्त जे हवाले सां घुमण वेंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ माॻनि ते। जेकॾहिं दौरान सफ़र उन्हनि असांखे ट्यून कयो आहे त असां उन्हनि जे सफ़र जे लाइ दुआगू आहियूं असांजी पूरी टीम। त मिड़नी महिरबानी जो सफ़र जेको आहे उहो ख़ैरियत वारो थिए, बाहिफ़ाज़त पंहिंजे माॻ ते पहुचनि, ख़ैर सलामती सां मोटी पंहिंजे घर अचनि। ऐं जेके जेके महिरबानी मोटर साइकिल ते वञनि पिया ऐं उन्हनि खे गुज़ारिश आहे, हिकड़ी निमाणी इल्तिजा आहे त प्लीज़ थोरो आस्ते स्पीड आस्ते

सोचियो वेंदो आहे यकीन हक़ीक़त आहे त आज़ादी हिकु वॾी नियामत आहे। अलहमदुल्ला अला पाक असांखे असांजो हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क अहिड़े खेत्र में असांखे आज़ादु ॾिनो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ॾाढा ख़ूबसूरत ख़ितो आहे। असांजे मुल्क जा इलाइक़ा, असांजे मुल्क जा सूबा ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि। असांजा माग जेके आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि। असांजो कल्चर, असांजो कल्चर दुनिया खां निरालो आहे।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सुखी जनाब अली कार चवंदासीं हिकु भेरो ॿीहर जी एफ एम मातली 90.4 छी लाइव स्टूडियोस मां जश्न आज़ादी मुबारक शो जारी आहे। जिन जिन महिरबानी असांखे हाणे हाणे ज्वाइन कयो आहे, ट्यून कयो आहे, उन्हनि ख़ूबसूरत समातुनि खे भली कार चवंदासीं ऐं जश्न आज़ादी 14 अगस्त जो खोड़ सारी मुबारक। जिते जिते जंहिं दिमाग़ ई असांजे मुसाफ़िर आवाज़ तां ताईं पहुचे पियो, जेकॾहिं तव्हां ख़ूबसूरत प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहियो था ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियणु चाहियो था, त हुनजे लाइ असांखे हिकिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888-1 ते असांखे सेंड करे ॾींदा, जी हा 88 ते। दौरानी सफ़र असांखे ॿुधंदा असांजा स्टेशन मैनेजर आहिनि सर यूनस बकारी साहब ऐं दानिश बकारी साहब। वॾी महिरबानी मिठा माण्हू, तव्हां असांखे दौरान सफ़र जॉइन कयो आहे, वॾी महिरबानी। तव्हां जूं खोड़ सारियूं मोहबतूं ऐं असांजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि त तव्हांजो सफ़र जेको आहे सुहानो थिए, तव्हां ख़ैरियत सां पंहिंजे ॻोठु पहुची वञो।

जेको भी कम करियूं वो मुल्क पाकिस्तान की भलाई के लिए हुए मोहब्बतू निछावर करियूं मोहब्बतू डूं मोहब्बत।

मीर मुर्कवाड़ो साहब असा खूबसूरत तारजेन असाइन वाली मेहरबानी साई मीर मुर्कवाड़ो असो बेहतरीन साथी है खूबसूरत प्रोग्राम कंदो है इंशाल्लाह जल्द तांगे जॉइन कंदा असांजी पूरी टीम मीर मुर्क वाडो पंहिंजी मौजूदगीअ जो अहसासु ॾियारियो आहे साईं लख थोरा तव्हां

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में उणासियों जश्न आज़ादी कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपन ए सूबाई राजधानियों में 21 तोपन की सलामी से डींहं की शुरूआत। मुल्की सलामती ए खुशहाली लाइ खुसूसी दुआओं भी घुरी वयूं। सरकारी निजी इमारतन ते कौमी परचम फड़काया पिया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जो तकरीबू आज़ादी की खुशी में केक भी काटिया पिया। नौजवान नारियन बुढ़न तोड़े बारन पारा वतन सा मोहब्बत जो भरपूर इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर के आज़ादी वाले दिहाड़े की मुबारक दिनी तारीखी दिफाई मक्का मुआहदे का आगाह किया। दिफाई मुआहदे लाइ नेक ख्वाहिशन जो इजहार कदे वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिश के सराहो। फौज ए कानून लागू कदड़ इदारन के पेशा वारण सलाहियतन के खराज तहसीन। मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली सरदारी मौजूदा इलाकई सूरत हाल के नजर आडो रखे अवाम के रिलीफ डेण की जरूरत से जोर भरीदे आम वाइपे वाली शयन की बिना रंडक के फ्राहमी ए मुनासिब अगर से दस्तियाबी यकीनी बनाई वे। यादगार फतह की इफ्तताही तकरीब दौरान अस्करी क्यादत की सदर ए वज़ीर आज़म सा गड शहीद के वारिसन से खुसूसी मुलाकात। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो शहीद गाजियन के वारिसन की साबित कदमी कुर्बानियों के खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद गाजियन के वारिसन मथे शफकत जो हथ रखे शहीद असाजे मथे जो ताज आया।

0: एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: खुशखबरी अवांजे पैंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुन्यातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अजा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा
5: 03125252786
0: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

कुर्बानी जे नतीजे में अज असा इन दुनिया जे नक्शे ते एक आजाद एक ताकतवर एटमी ताकत जी कुवत रखंदड़ मुल्क तौर सामू आया से। तो मुझे मिठा सही प्रोग्राम असो पूरे नेटवर्क तक कनेक्टेड है। प्रोग्राम मोरू खान हिर के पे वे पर असा गड सखर वारा भी है, लाड़काने वारा भी है, असा गड मीरपुर खास वारा भी है, असा गड मटियारी मातली वारा भी है, असा सकरंड मेरापुर वारा भी है, मोरू जात मानू आहिन ही आहिन। जिते जीएफएम नेटवर्क हमेशा कोशिश कई है अड़े किस्म जहाँ जे भी इवेंट थे स्पेशल ट्रांसमिशन होंगी है, उन स्पेशल ट्रांसमिशन में असा जे सुबह का वी बेहतर बेहतर प्रोग्राम ऑनियर थे असाजे न सिर्फ जीएफएम नेटवर्क पर सिंध के मशहूर आरजेस के आवाज में तमाम बुधा है। यो असो अड़ो तसलसल अज आखिर तई जारी रह। तां पांजी राय असांजे प्रोग्राम में ॾेई सघो था ज़रिए एसएमएस। एसएमएस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे, हमेशा वांगुरु तव्हांखे असां ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां सां असांजे 888-1 ते। इहो ज़रूरु हुन में लिखणो आहे त तव्हां जो अॼोको ॾिहाड़ो कहिड़े तरीक़े सां गुज़रियो, तव्हां अॼोके ॾिहाड़े ते स्पेशल कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं, ऐं इहो बि हुन में ज़रूरु तव्हांखे असांखे ॿुधाइणो आहे त अॼोके ॾिहाड़े ते तव्हां अहद कहिड़ो कयो आहे त असां पंहिंजे हिन क़ौम जे लाइ, पंहिंजे हिन वतन जे लाइ छा कंदासीं। अल्लाह ताला असांखे हीअ सरसब्ज़ धरती अता फरमाई आहे, जॾहिं अल्लाह पाक हिन धरतीअ खे पैदा कयो त हुनखे कुदरत जो हसीन रंगनि सां सिंगारे छॾियो। सरसब्ज़ वण बूटा फसल बाग गुल पाणीअ जूं नदियूं धरतीअ जे हुस्न में इज़ाफ़ो कनि थियूं ऐं साए रंग फितरत ज़िंदगी उमेद अमन ऐं ख़ुशहालीअ जी अलामत बणजी वियो आहे। ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो आहियां, जॾहिं असां पंहिंजी चौधारी नज़र फेरायूं था न त महसूसु थिए थो त साए रंग में हिकु अजीब कशिश ऐं सुकून समायल आहे। सावा वण न रुगो माहौल खे ख़ूबसूरत बणाइनि था पर असांखे साफ़ हवा, छांव ऐं ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी ऑक्सीजन पिण जेको आहे न उहो बि असांखे फराहम कनि था। सावा फसल हारी जी महिनत मुल्क जी खुशहाली ऐं मुस्तक़बिल जी उमेद जी निशानी आहिनि। उन ई पसे मंज़र में जॾहिं असां पाकिस्तान जे क़ौमी परचम ते नज़र विझूं था न त उन जो साओ रंग असांखे फितरत जे उन ई हसीन तख़लीक़ सां हिकु गहरो तालुक़ महसूस कराए थो। क़ौमी परचम जो साओ हिसो मुल्क जे मुस्लमान अक्सरियत जी नुमाइंदगी करे थो ऐं जॾहिं त अछो हिसो अक़लियतुनि जी नुमाइंदगी ऐं अमन जो पैगाम ॾिए थो। चंड तरक्की ऐं तारो रोशनी ऐं इल्म जी अलामत समझा वञनि था। क़ौमी परचम रुगो कपड़े जो हिकु टुकड़ो न अथव मुंहिंजा साईं, पर उहो असांजी क़ौमी सुञाणप, इतिहाद, क़ुर्बानीनि ऐं उमेदुनि जी अलामत अथव। जॾहिं बि साए रंग ऐं अछे रंग जे परचम खे हवा में लहराईंदे ॾिसो था न त दिलि में पंहिंजे वतन जे लाइ मुहबत, इज़त ऐं ज़िमेवारी जो अहसास पैदा थियणु ज़रूरी आहे। असांखे घुर्जे त क़ौमी परचम जी इज़त सां गॾु पंहिंजी धरतीअ जे साए रंग जी बि हिफ़ाज़त करियूं। वध खां वध वण पोखियूं, ॿेलनि खे तबाहीअ खां बचायूं, पाणीअ खे ज़ाया थियण खां रोकियूं, पंहिंजे माहौल खे साफ़ सुथरो रखूं, छो त सरसब्ज़ धरती सिहतमंद, खु़शहाल ऐं ख़ूबसूरत मुस्तक़बिल जी ज़मानत हूंदी आहे। शायदि उन ई करे ई जॾहिं असां सोचूं था त अलाह पाक धरतीअ खे साई चादर सां सींगारियो त असांजे क़ौमी परचम में बि साओ रंग छो आहे, त दिलि मां हिकु ई जवाबु निकिरे थो त साओ रंग ज़िंदगी, उमेद, अमुन, तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जो पैगाम आहे।

0: देश मेरा सोना जी हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला असांखे तमाम घणो खूबसूरत देश अता फरमायो आहे अल्लाह ताला जा तमाम घणा शुक्र गुजार आहियूं असां अल्लाह ताला असांखे अहिड़ी हसीन वादियुनि वारो समुंडनि वारो ऐं सरसब्ज़ इलाइक़नि वारो मुल्क अता फरमायो आहे त दोस्तनि जा मैसेजिस बि आया आहिनि त हुननि जा मैसेजिस बि पंहिंजे प्रोग्राम में गॾो गॾु शामिल कंदा हलंदासीं ऐं हुननि खे घणो इंतज़ारु बिल्कुलु न कराईंदासीं साजिद अली मुंगेरीअ सां गॾु आहे माइक्रो कॉलोनी सखर खां ऐं चवनि था असांजो अॼु को ॾिहाड़ो तमामु बहितरीन गुज़रियो आहे सिंध सलामत साध सलामत जी हा बिल्कुलु अदा असांजी दुआऊं आहिनि तव्हांजो न सिर्फ़ अॼोको ॾिहाड़ो बल्कि जेके बि तव्हांजे ज़िंदगीअ जा ॾिहाड़ा आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त गुज़रंदा ई असां पंहिंजे सिंध धरतीअ जे लाइ असां पंहिंजे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणा दुआगो आहियूं त उहे सदा चाम जे ॾींहं ताईं सलामत रहनि वॾी महिरबानी अदा साजिद अली मुंगेरी साहब तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा ॻोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम नीनू बंबरो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे चए थो अदा गुलाब खान ख़ुशि आहियो जी अदा साईं मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां मुंहिंजी दुआऊं आहिनि ऐं मां बि तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियां ऐं चवनि था जश्न आज़ादी जे ॾिहाड़े ते तव्हांखे ऐं तव्हांजी टीम खे मुबारकबाद हुजे जी अदा ख़ैर मुबारक ख़ैर मुबारक वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा साईं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं असांजे तरफ़ खां बि न सिर्फ़ तव्हांखे तव्हांजी फैमिलीअ खे तव्हांजे ओड़े पाड़े वारनि खे बल्कि पूरे पाकिस्तान जी जेके असांजा लिसनर्स आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके असांजा पूरा पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि सभिनी खे बि लख लख वाधायूं हुजनि त राबिया सखर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे चए थी अलाह का लाख लाख अहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफ़े में दिया जी हा बिल्कुलु राबिया हिन में को शक न आहे अलाह ताला असांखे तमामु घणो हसीन मुल्क अता फ़रमायो आहे अलाह ताला असांखे समूरी उहे नेमतूं अता फ़रमायूं आहिनि जेके असां जेके उहे मुल्क जन वटि उहे नेमतूं न आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ ख़्वाब बणियल आहिनि त उहे समूरियूं नेमतूं अल्लाह ताला असांखे अता फ़रमायूं आहिनि त उन जे लाइ असां तमामु घणा रब करीम जा शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं राबिया चवनि था त शुक्र अलहमदिल्ला ऐं शुक्रिया क़ाइदे आज़म जी हा न सिर्फ़ क़ाइदे आज़म बल्कि असांजा जेके वॾड़ा हुया न जेके जिनखे असां ॾाॾा पड़ॾाॾा तव्हांजा बि हूंदा असांजा बि हूंदा ऐं अगरि तव्हां पाकिस्तान जी हिस्ट्री खोले पढ़ंदा न त उन में तव्हां ॾिसंदा त क़ुर्बानीूं जेके आहिनि उहे के सवनि में न आहिनि के हज़ारनि में न आहिनि लखनि में क़ुर्बानीूं आहिनि उहे नौजवाननि मां उहे वालदेन पंहिंजे नौजवान बचनि जा लाश पंहिंजे हथनि सां खयां हुया
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशि ख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी शहर मातली में अवां जो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियों जो इलाज बार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अजा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाने रोजानू मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
8: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंह के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।